0: मिंगा चुवे तै तौ कासना नल्ली गु सिंतिरिस पा समुह बने का नचा रिगुस पा लिका वंगी मंग
1: अरे अरे चैता से तनिंगा पा समुह याने हम पिन नै चैता कन्या पस कचम से जों छम बिसुन जे मर जे ऑफिशियल लिखि रियल चिंबि तब वाकु चिल का कुन म कोस ने चन की कन सते
0: निगा खै बिन लिस्ट मारे तै तमाइटो
1: या या सिना काजा रिसुन एस्ता कुन एस्ता